लुशका लुशका लुई लुशका ये तो है इब्तेदा आगे होगा क्या ये तो है इब्तेदा

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी रंग भूमि जब सिए पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

वो दिल दिल ही क्या है, वो दिल दिल ही क्या है जो मिलने की दुआ न करे, हम तुझको भूल कर जिंदा रहे, कभी खुदा ना करे।

तो रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए। बढ़ते हैं दी ओपनिंग सेलेक्शन की तरफ। स्पेशली आपके लिए पेश है आज की सुबह के प्रोग्राम में।

ओ हम सफ़र, ओ हम नवा, बेशक हम बस तुम्हारे हुआ, मेरी तो सारे सवेरे बाहों में तेरे। ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुने हैं। बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो, बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो, ख्यालात ऐसी हो कि कभी गम ना हो, दिल के कोने में इतनी जगह रखना, दिल के कोने में इतनी जगह रखना कि खाली खाली सा लगे जब हम ना हो। A very good morning, Mr. Sher Singh. Danach se. Hey, Andrew and Chitra.

0: The Talk of the Town, जुबिन नौटियाल से आपने सुने। ये उजाला रेडियो है, कविता रानी के साथ एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। एंड या दार है वो रॉय रघुनाथ वेर एन हेले गोये मोर्गन रॉय। En jij zou weer op de taxi zitten natuurlijk. Hey, en Amsterdam me mosem thorasa abhi बदली छाई हुई है और आपके शहर में मौसम कैसा है आप थोड़ा सा कष्ट उठा के बता दीजिएगा। पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पूछा ने हाल किसी का तो किसी ने रो दिए, पानी में अक्ष चांद का देखा तो रो दिए, पानी में अक्ष चांद का देखा तो रो दिए, बादल फसा में आपकी तस्वीर बना गया, बादल फसा में आपकी तस्वीर बना गया, साया कोई ख्याल का गुजरा तो रो दिए। तो ऐसे ही होता है, जब कोई ज़्यादा ख्याल में आता है, याद आते हैं, तो कभी कभी इंसान रो देता है।
1: तुम्हारे सिवा कभी और कोई नजर न आया, दिल में झांक कर जब भी देखा तुम्हें पाया।

तुम हो दिल में धड़कन में सवाए भक्त के ज़रिए आपने गीत को सुना है। अगर मैं ये व्हाट्सएप की तरफ देखूँ तो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और नंबर व्हाट्सएप का 020-363-9898 ये स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर है, 020-363-9898 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो सीधा स्टूडियो में आ जाएगा। ये ना सोचो कि खरी राह तकदीर मिले, ये ना सोचो कि खरी राह तकदीर मिले, ख्वाब देखो कि किसी ख्वाब की ताबीर मिले।

0: और भोरे भोरे बादल है, तो ये बादलों के पीछे सूरज छुपा है, तो आज जरूर से निकले गया, कितने देर तक छुपेगा।
1: अब है तू नींद हूँ मैं दोनों मेरे,
0: तो छुपने वालों से कह दो कि सामने आए
1: रोज यही
0: और दिल बहलाए।
2: Hey, this is UR and this is Kavita Rani.
1: What
2: KR for UR.

मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। वाह, आतिफ असलम की मधुर आवाज में ये गीत को आपने सुना। आतिफ असलम रियली अ रॉक स्टार। मैं इश्क में, मैं तेरा इश्क बन जाऊं, तू क्यों ना।

मैं इश्क तेरा बन जाऊं और मेरी चाहत तो तू ही है, ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम मुझसे रूठ से गए हो, तुम मुझसे रूठ से गए हो, तुम्हें मनाऊं तो कैसे मनाऊं।

प्यार मांगे रे, कभी जज्बों कभी ख्वाबों की तिजर्रत करके, कभी जज्बों कभी ख्वाबों की तिजर्रत करके, दिल ने दुख दर्द कमाए हैं मोहब्बत करके। तुम जब आओगे तो महफूज मिलेंगे तुमको, तुम जब आओगे तो महफूज मिलेंगे तुमको, हमने दफनाए हैं कुछ ख्वाब अमानत करके। एक ज़रा सी भूल हुई और उसे खो बैठे,

कहाँ सी भूल हुई और उसे खो बैठे, हमने पाया था जिसे, हमने पाया था जिसे, बरसों इबादत करके।

0: कर सको तो सनम एक काम करो। राज नंदिनी से आपने गीत को सुना उजाला रेडियो के जरिए। घड़ी की तरफ मैं देख रही हूँ तो 10 मिनट बाकी है 10 बजने में। 3:14 स्टूडियो टाइम 10 बजे आपको याद है कॉफ़ी टाइम मेरे साथ और या कमर्शियल ब्रेक के बाद कॉफ़ी टाइम 10 बजे। तो इस 10 मिनट का जल्दी से फायदा उठाइएगा। बेजुबा इश्क आप सुनोगे।
1: आँखों में बसा लूंगा

ना रहेगा कोई गिला इस कदर प्यार करेंगे तुम्हें। आपकी खातिर, आपकी खुशी की खातिर हजार आंसू बहा देंगे।

0: जहाँ दिल से आती है सदा कि बस तुम ही हो प्यार मेरा। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हुए जाला रेडियो के प्रोग्राम में 10 बज रहा है। या इफोन दौलत, इट्स कॉफी टाइम एंड यस खाकल्स
1: यू एंड मी
0: नेट ऑफ टाइट इन
1: It's not about a coffee.
0: Let's share a coffee, chai.
1: It's about you and me.
0: Sherbet.
1: Honey.
0: Jo bhi aap peene wale hain.

0: यू एंड मी,
1: आप और हम, हम और आप, मीलों की दूरियां हैं, मीलों की दूरियां हैं, फिर भी हम साथ मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ गपशप करते हैं।

0: मिलू तो सही, राधे राधे परिवार बिहारी अद्रीदा तो मिलके हमने कॉफी पी है। एंजॉय खनीत फाइए बाकी एंड laat het je smaken en laat het ook een hele mooie dag worden vandaag, want de zon schijnt in Amsterdam. Amsterdam Studio EKC Studio 21 se program aap tak nashar hota hai, aap tak pahunchta hai. सफर मोहब्बत का दुश्वार कितना है
1: के पलकों के पीछे छलके तन्हा आंसू कोई
0: बस यही देखना कि
1: सताए वो छलके छलका जाए यूं ही
0: कि कोई वफादार कितना है।

मीठा मर्ज देने आना तुम कभी। मुझे ये गीत बेहद ही पसंद है, एक मीठा मर्ज देने आना तुम कभी। सफ़र मोहब्बत का दुश्वार कितना है, सफ़र मोहब्बत का दुश्वार कितना है, मगर देखना है कि कोई वफादार कितना है। ये सोच के उसे कभी मांगा है नहीं मैंने, ये सोच के उससे कभी मांगा नहीं मैंने, उसे परखना है कि वो मेरा तलबगार कितना है।

ऊरली चुनरिया बस तेरे नाम की। और कभी कभी ये दुनिया कितनी सुहानी लगती है, कभी कभी ये दुनिया कितनी सुहानी लगती है, और कभी कभी कितनी परेशानी सी लगती है। जितना कोशिश करो समझने को उतना ही उलझ जाता है, जितना कोशिश करो समझने को उतना ही मुश्किल लगती है। ये समझे वो महान है, जो समझे वो महान है, जो ना समझे वो नादान है। पर रहता है ये दिल हमेशा, पर रहता है ये हमेशा अनजान। किसी के लिए सवाल है तो किसी के लिए जवाब है। प्या ओरली चुनरिया तेरे नाम की, प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म का नाम है। सोनू निगम की आवाज़ में आप सुनोगे कभी सोचा न था मैंने कि हो जाएगा प्यार।

कभी सोचा ना था मैंने, सोनू निगम एंड सोनाली वाजपेयी से आपने गीत को सुना और ये एल्बम से निकाला गया है प्यार किया तो डरना क्या है। ईसी महारानी भी अलमेर से प्रोग्राम सुन रही है, वेलकम। शायद आप गाड़ी में हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, रास्ते के हालात पर जरूर से ध्यान देना। And you drive safe, आपका सफर जरूर से सफल हो। And you waited, niet gaan bellen. And WhatsApp, tijdens het rijden. Leg dat in neer. And have a safe drive.

मोहब्बत हुई है सनम चोरी चोरी, जी दिल तुमने ली है सनम चोरी चोरी। आदनाम सामयन कविता कृष्ण मूर्ति से आप लोगों ने बेहद ही खूबसूरत गीत को सुना, फ्रॉम द फिल्म कर्ज। कुमार सानू को ला रही हूँ आज के प्रोग्राम में, और साथ देने वाली है अवका जी।

ओ दिल चुरा ले चांद सी चेहरे वाले, कुमार सानू एंड अलका जी की आवाज़ों में फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता। आरजू किसी की आज ना टूटे, आरजू किसी की आज ना टूटे, जिंदगी आज किसी से ना रूठे। इश्क बिना क्या जीना, इश्क बिना क्या जीना।

सुबह को लिखती हूँ शाम के इंतज़ार में, सुबह को लिखती हूँ शाम के इंतज़ार में, शाम को लिखती हूँ रात के इंतज़ार में, शाम को लिखती हूँ रात के इंतज़ार में, और रात को लिखती हूँ नींद के इंतज़ार में।

छुप गया भी चांद बदली में, चांद भी शर्मा गया, सारे तारे छुप गए। दिल बेकरार है क्या इसको किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है क्या इसको किसी का इंतजार है, दिल बेचैन है क्या इसको किसी से प्यार है। Ria Kalu, een hele goede morgen vanuit Amsterdam. En hey, Mala uit Horen. Van harte welkom op jahan par bhi ho jis haal mein ho. Program ko sun rahe, meri awaaz ko sun rahe, mera pyar bhi aapke dil mein pahunche. Ya aapke dil tak pahunche. Hum safar ke liye, hum safar chahiye. और अपने सफ़र पूरा करने के लिए ज़रूर से हम सफ़र चाहिए। Een hele mooie dag toegewenst.

कसम से कसम से कसम से, और बस उम्र भर हम प्यार करते रहेंगे, हम आपके दिल में रहते हैं। लवली सॉन्ग अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू से।

और कब तक सातों जन्म में कुमार सानू एंड अलका जी से। तो हम धीरे धीरे धीरे धीरे चलेंगे पुराना गीत की ओर, और आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, ज़रा सा देखूं ये हो जाए फिर हम। पुराना गीत आपके लिए

जाने दिल मेकअप से है तू यारा रब से पहले है तू स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट वॉइस लता जी की साथ देने वाला था सोनू निगम पुराना गीत पुराने गीतों के शौकीनों के लिए और ऐसे में याद करते हैं साहेब इब्राहिम सरल को जो अमसर अमजा तो उसमें प्रोग्राम सुन रहा है

वाह क्या एनर्जीफुल गीत है, तुझे ही प्यार करते बस करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं रुखसत हो रही हूँ, आपका साथ ना हो तो हम कहाँ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी कहती है आपसे आपकी रानी। जिस तरह से आपने साथ भी दिया, आपने प्रोग्राम सुने हैं, थैंक यू सो मच।

0: अच्छा लगा आपके साथ ये 3 घंटे बिताने के लिए। आपको याद रहे अपना ख्याल जरूर रखना और अपने प्यार करने वालों को। मिलेंगे आपसे इसी मोर पर, अगर रहेगी ये जिंदगानी तो मिलेंगे जरूर आपसे आपके रानी।
1: मुझे जाना है मेरे ही पास तुझे आना।
0: साइनिंग ऑफ फॉर उजाला रेडियो, कविता रानी
1: तेरी है फिर कैसी देरी।
0: KR फॉर यू आर। मिलेंगे वेरी सून, यू टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

खुशी के साथ गमी है पैदाइश के साथ माल उजाला रेडियो के जरिए सुन वालो मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। अलमीर स्टाद के रहने वाले समस्त परिवार मुन्नीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदख 26 सितंबर को 69 साल के आयु में इन लेफ्टाइट फान 69 jaar verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad में। Almere Stad के रहने वाले स्वर्गीय पिता अलम प्रसाद मुनीलाल स्वर्गीय माता सुखिया जुगन के बेटा बहन स्टेला शिव सहाय मुनीलाल के भाई बहनोई सुरेन शिव सहाय के सार अमृत और जयंती के मामू वर्षा बैजनाथ मिसीर और वाहिद निजाती के मामू ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है जिन्हें लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हो गया है फर्सोर्गिंगस्टहाउस कीकंदीव अलमीर स्थित में। अलमीर स्थान से समस्त परिवार मुनीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदख 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन द लेफ्टाइट फान 69 jaar verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad में स्वर्गीय पिता अलम प्रसाद मुनीलाल और स्वर्गीय माता सुखिया जुगन के बेटा बहन स्टेला शिव सहाय मुनीलाल के भाई बहनोई सुरेन शिव सहाय के सार अमृत और जयंती के मामू वर्षा बैजनाथ मिसीर और वाहिद नजाती के मामू ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है जिन लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हुआ है फर्सोर्गिंगस्टहुइस कीकंदीव ते अलमीर स्थित सूरीनाम जिसमें निकेरी बोनाकर पोल्डर नंबर 12 के जो रहने वाला था। अर्थी से आखिरी मौका है विदा लेने के लिए आने वाले बृहस्पतिवार आनस्ताने डोनदाग 1 अक्टूबर ओस्टरड्रेव 15:15 अलमीर में और अभी शाम के वक्त 5 से लेकर 6 बजे तक दाह क्रिया को किया जाएगा। Uitvaart, ja, crematie is aanstaande vrijdag, Annabelle Sukruwaar, Dotarik, Oktoberko, 2 Oktoberko, vanaf 1:30. Begraafplaats, crematorium Westgaarde, ook meer weg, Doosoppetjes ter Amsterdam, Oostdormee. Samen bij die waard, Jan, bij het aanzien in Widdenheim, is Gabberko, Aur, Doertek, Bahoutja, Dering Kleem. Ujala Radio, samen bij die waard, Munilal ke doeg mee, Shamil he, Yahatakaap, Nisunheim. Ujala Radio, Gizrepe, Shkia, Gahe, Meritus, Samachar.

0: Ugella Radio. Ugella is toch mijn favoriete radiostation.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी,

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: ये है उजाला रेडियो, यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खाती है।

मून ने संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया। ये उजाला रेडियो है जहां गीतों के साथ आपके रात और दिन खूबसूरत बन जाते हैं।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
1: चलती है क्या नौ से बारह
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala, peix crehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meerwaard. Met Sanjay Jodha, Maus Milroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi en muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program shurhone wal hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

बजकर 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है और वो भी इस महीने सितंबर का आखिरी, मतलब इस देर तक सितंबर मेरे प्यारे सुनने वालों। 30 तारीख सितंबर है और चंद घंटे और तो ये सितंबर महीना हिस्टोरी में गिना जाएगा, लेकिन ये कुछ घंटे इस आखिरी बुधवार का हम आपके साथ मिलकर बिताएंगे, क्योंकि लाइफ एंड आर्ट की वार के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और आज मेरे प्यारे सिनेमालो कुछ हफ्तों के लिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूं और कुछ हफ्तों के लिए एक मशहूर म्यूजिकल जोड़ी का प्रोग्राम हम सजाएंगे जिनका नाम है कल्याण जी अनान जी। 250 मूवी लगभग हिंदी फिल्म मूवीज के लिए ये दो महान फनकार अपना संगीत दी है और बहुत सारे खूबसूरत हिट्स हमें दी है। कल्याण जी तो अब हमारे साथ नहीं रहा, आनंद जी अब भी है, लेकिन इनके कुछ यादगार नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों आज से हम शुरू करेंगे प्रोग्राम बनाने का और प्लेलिस्ट में जैसे मैंने कहा इनकी यादगार गाने शामिल हैं और आने वाले बहुत सारे हफ्तों के लिए जहां तक मेरा ख्याल है 6-7 शायद 8 भी होंगे प्रोग्राम हम सजाएंगे ये मशहूर म्यूजिकल डियोजी का। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर तरह के म्यूजिक इन्होंने बनाए हैं और इन दोनों का म्यूजिक जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकर पकंद क्या कहूँ, एक पहचान ये दोनों ने बना कर रखे हैं और हम सभी पसंद करते हैं और शायद ये भी नहीं जानते हैं कि इन दोनों ने अपना म्यूजिक दी है। बड़े बड़े और सभी नामी सिंगर्स के लिए कल्याण जी अनान जी ने अपना म्यूजिक दी है, बहुत सारे नामी सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया है और तरह तरह सिंगर्स कलाकार सुपरस्टार हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं। तो आज एक छोटा झलक आपको सुनाएंगे बस यही उम्मीद तराशा के साथ कि आप भी भरपूर एंजॉय करेंगे हमारे ये प्रोग्राम के दौरान। मेरे प्यारे से नॉलो स्टूडियो में अवश्य आप ऐप कर सकते हैं 03-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तार के जरिए आप अपना कामकाज निभा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको तार करना है दफ्तर के तार पर 02-409-0807। उजाला रेडियो का दफ्तर का तार का नंबर 02-409-0807। या तो कीजिए 24 घंटे 7 दिन लगातार आप मिल के जरिए भी, जो और भी आसान है, अपना कामकाज आप करवा सकते हैं, दिवा सकते हैं। फरमाइश, जरूरी खबरें, जैसे मैंने कहा मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल मिल कर सकते हैं info@ujala.nl। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म 1978 का, 1978 बिग ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म डॉन के बात हम कर रहे हैं। ये फिल्म के लिए भी कल्याण जानान जी ने अपना म्यूजिक दी है और बहुत सारे खूबसूरत गाने ये फिल्म में हैं। कल्याण जानान जी की म्यूजिक छोटा रूप में आपको हम सुनाएंगे और उसके बाद में एक नगमा अनजान साहब जी का लिखा हुआ, जो किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे कल्याण जी अनान जी की साज और संगीत पर। तो लीजिए चलिए आज ओपनिंग करता हूँ कल्याण जी अनान जी की म्यूजिक्स के साथ और गाने जो हमने बयां की हैं।

0: दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया और मैं हूं कौन। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, म्यूजिक के साथ कल्याण जी आनंद जी, इन्होंने ये गीत गाए हैं और अनजान साहब जी ने खूबसूरत गीत को लिखा। फिल्म का नाम डॉन, मेरे प्यारे सुनने वालों, डॉन, जिसमें असली डॉन टीनेज ग्रेड एंग्री यंग मैन दबिक भी अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, सिनत अमान के साथ कमल कपूर, हेलन प्राण साहब जी, इफ्तिखार उमशिफ पुरी, मैकमोहन शेट्टी, सत्यन कप्पू और मेरे प्यारे सुनने वालों चंद्र बारो जी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहा, इन्होंने ये मूवी को डायरेक्ट किया है। फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और इस आखिरी सितंबर का जो बुधवार है, 30 सितंबर, het gaat allemaal zo snel. Ik kom dagen tekort, mijn parents en hallo, heb je geen neem aan inge. Ik ben aan het racen. Or bhi wakt chahiye. Ek din ka ghanta 24 na ho, 36 hone do. Or ek hafte 7 din nahi, 9 din bana lo. Hai na? Tabhi to maza aayega. मेरे प्यारे सुनोलो, मैं कल्याण जी आनंद जी का प्रोग्राम आज सजा रहा हूँ इनकी खूबसूरत गाने। नटुलक कोशिश हमने किया है बहुत सारे जाने पहचाने नगमाएं आज के प्लेलिस्ट में सजाने का, लेकिन कुछ छुपा हुआ भोला हुआ हीराज भी है इसमें भी, जो आप तक हम पेश करेंगे। वन दत मुटवा नटुलक उगनी फरखेत की बहुत सारे गाने पॉपुलर हुए हैं और बहुत सारे गाने कुछ कम पॉपुलर हुए लेकिन खूबसूरत है, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक गीत की ओर, पार्टी सॉन्ग की ओर। ये भी अनजान साहब जी का लिखा हुआ है और वंस अगेन ऑफ कोर्स म्यूजिकल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, महेंद्र कपूर जी, और मैं देखता हूं nu heb ik daar twee namen staan, maar volgens mij is het Asha. Even goed kijken. Ja, Asha ji. Asha ji or Mahendra Kapoor ji. Pesh karta hu. From the movie Mukaddar ka Sikandar, ye bhi 1978 ka film hai, mere pyare sunne walo. Enjoy.
1: Virtual DJ.
2: You like it?

यस यस यस यस प्यार जिंदगी है और प्यार भी बंदगी है। खुद मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि महेंद्र कपूर जी के साथ साथ नाइटिंग आशा जी और लता जी ने भी मिलकर गीत गाए हैं। एक दादा तालियां आशा बस, लेकिन लता ने भी गाए हैं। अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा और कल्याण जी अनहन जी की ग्रेट म्यूजिक। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। और मेरे प्यारे सुनने वालों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये मूवी अभी चलेंगे तो हम देखेंगे, चाहे बीच में चाहे शुरू से माकनी। और ये फिल्म हमने लगभग शायद 100 बार देख चुके होंगे। प्रकाश मेहरा जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, द बिग बी अमिताभ बच्चन, द ग्रेट विनोद खन्ना, रेखा जी गुलजार, राखी राखी गुलजार, रंजीत अमजद खान, कादर खान, निरूपण रॉय, डॉक्टर श्री राम लागो, इन सभी का फिल्म है, जिसमें यूसुफ खान भी है और हु है थी मयूर, हाँ जी मयूर, जो लिटिल बिग बी का रोल अदा किए हैं। मेरे प्यारे सुनो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.nl। कल्याण जी अनंत जी मेरे प्यारे सुनने वालों, इनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और जैसे मैंने कहा, लगभग 250 हिंदी मूवीज के लिए अपना संगीत दी है और हम इस वक्त 70s में हैं। धीरे धीरे हम 80s के उस पार अभी जाएंगे नहीं फिलहाल ये प्रोग्राम में। गाँव नीत फॉर बाई द यार 80, वो ब्लाइफ नोख इन द यार 70, en dan gaan we zakken naar 60 en wat ouder. ठीक है, क्योंकि इतने सारे गाने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हमने सोचा आज 80s के उस पार हम जाए ना। एंड साहबा नतुलक बहुत सारे अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले हैं, जैसे हिमालय की गोट, जिसके संगीत भी हम चलाएंगे जरूर से जरूर, उपकार के लिए, फिल्म संजीर के लिए, जिसके गाने भी अभी कुछ देर के बाद हम आपको सुनाएंगे, दोन के तो हमने सुना चुके हैं, और कुर्बानी भी म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नॉमिनेशन मिला है, त्रिदेव के लिए भी मिला, फिल्म बैराग जिसमें दिलीप साहब जी ने 3 रोल अदा किया है। और ये तो है फिल्म फेयर अवार्ड मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री भी मिले हैं इन दोनों को, और ना जाने कौन कौन अवार्ड्स भी मिला है। ग्रेट म्यूजिक, बहुत खूबसूरत म्यूजिक इन दोनों का, और काफ़ी कॉपी किया जा रहा है आजकल, और क्यों ना करें, मैं तो कहता हूँ कि कर लो, लेकिन अगर आप करें तो कोशिश करूं कि इसे एक ऐसे रूप में आप पेश करें जो इस टाइम में सूट होते हैं। हाँ, नीत स्लेक्टर मार्क मार्कत फिल्म हो तू जाने तो। हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सिनेमा वालों। फिल्म का नाम दो मुसाफिर, और दो मुसाफिर इत्तफाक से भी एक फिल्म है 1978 का, नहीं हती नख्तन से ही। और मैं जो गीत निकाले हैं, दमू तक वेल इफ स्पीकर या एक तख्त था, तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, क्या बात है, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल मिलकर गीत गाएंगे, हशमत साहब जी का लिखा हुआ, एंड ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक।

तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, तेरे जैसा अंबर में कोई तारा नहीं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हशमत साहब जी का लिखा हुआ, कल्याण जयराम जी की साज़ और संगीत पर अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार ने मिलकर गीत गाए हैं। फिल्म का नाम दो मुसाफिर मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म 1978 और ये खूबसूरत मूवी का जो डायरेक्टर है, अरे लिखा नहीं, शशि कपूर और रेखा का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देख रहा हूं कि वक्त जो है बहुत आगे निकल गए हैं और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 7 बजे के इश्तिहारी की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। अगले मूवी जिसमें से गीत हम निकालेंगे, ये एक आखिरी मूवी होंगे 1978 आज के लिए 1978 का मूवी अतिथि से हम नगमा निकालेंगे। एक नगमा जो फिर एक बार किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल मिलकर गाएंगे, साथ देंगे कंचन और अनजान का लिखा हुआ गीत है, अनजान साहब जी इनका लिखा हुआ गीत है, कल्याण जयराम जी संगीतकार और गीत का बोल है, गा के जियो तू गीत है ये जिंदगी, पेश करता हूँ हीरो न्यूयॉर्क।

करके जियो तो गीत है ये जिंदगी। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनो अनजान साहब जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी की साझ और संगीत पर किशोर कुमार, अनुराधा बोडवाल और कंचन जी। फिल्म का नाम अतिथि और ये फिल्म 1978 का है। नीह थी नाख्तन सीवन तक अरविंद सेन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और शशि कपूर, शतगोन सुदुर्गन सिन्हा, विद्या सिन्हा, शबाना आजमी, उत्पाल दत्त जी, मैकमोहन, देवन वर्मा एंड द ग्रेट भारत भूषण जी ने फिल्म में काम किया है। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त तो बीता जा रहा है, कोशिश करता हूँ इस घंटे में दो नगमाएं और आप तक पेश करने का और दरखात से ही करवा लूंगा। और व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों ऐप कर रहे हैं 0303639909 पर। अभी कुछ देर में हम जाकर देखेंगे कौन है। अभी से आप सभी ऐपर्स को हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। इंदौर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूँ और निकालूंगा ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, जो है 1977 का मूवी फिल्म दरिंदा, फिल्म 1977 तक मेरे प्यारे सुनने वालों। यीशुदास की खूबसूरत आवाज और कंचन जी का लाजवाब बेमिसाल आवाज में गीत आप सुनेंगे। इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में कल्याण जी अनान जी की ब्यूटीफुल म्यूजिक, और का लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप एंजॉय करें ये नगमा के साथ।

प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा। खूबसूरत आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, कंचन जी और येसुदास ने मिलकर गीत गाए हैं, इंद्रवर का लिखा हुआ, फ्रॉम द मूवी दरिंदा। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म 1977 का कल्याण जैना जी जिसका संगीतकार कौशल भारती जी मूवी दरिंदा का डायरेक्टर है, और हमारे प्रिय श्री सुनील दत्त साहब जी ने फिल्म में काम किया है फिरोज खान के साथ, प्रवीण बाबी, मदन पुरी, प्रेमनाथ। इस घंटे का आखिरी गीत, जैसे मैंने कहा, मेरे प्यारे सुनो, सेवा में पेश करने जाएंगे, एक डांस सॉन्ग है, फनी सॉन्ग है, मस्ती भरी गीत है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, नाइटिंगेल आशा जी और महेंद्र कपूर जी को आप सुनेंगे कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम कसौती और ये फिल्म 1974 का है। निहतिन फिरन सेवंत, अरविंद सेन मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्राण साहब जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी का एक फिल्म। एंजॉय मेरे प्यारे सिनेमा, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

या पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, लोग भी बदल जाते हैं तू जाने तो। सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, कल्याण जी आनंद जी जिसका प्रोग्राम हम आज पहला सजा रहे हैं और कुछ हफ्तों के लिए कल्याण जी आनंद जी का ही प्रोग्राम हम सजाएंगे ही रविवार हर एक बुधवार के रात्रि को 6 से 9 बजे। फिल्म का नाम बैराग मेरे प्यारे सुनने वालों, 1976 का एक फिल्म, फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुआ है लेकिन मुझे तो फिल्म बहुत खूबसूरत लगा और गाने भी ये फिल्म का सभी लाजवाब बेमिसाल है। बैराग फिल्म आसिफ सेन जी का डायरेक्ट किया हुआ है और जिसमें दिलीप कुमार जी द ग्रेट दिलीप कुमार जी का 3 रोल है, एक बाप का 2 बेटे, एक बुड्ढू बेटा और एक जेंटलमैन तो जाने मॉडर्न बेटा। सहरा बानो भी साथ दिए हैं, लीना चंद्रवरकर, हेलन जी, प्रेम चोपड़ा, पिंटल भी है, नजीर खान, मदनपुरी और सुचित कुमार। मेरे प्यारे से नोलो मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ,

0: Ja, er was een jas voor mijn klok. Dat kan toch niet? Sama saat ka waqt hai mere pyare sunne walon, isko to for 7 aur live and direct you are ke studio Rotterdam se aap sun rahe hain Back to the Future. मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार आप सभी प्रिय सुनने वालों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाबर्स है. शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं. जो लोग काम पर है तो दिल लगाकर काम करना, सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के गाड़ी चलाना, या जो भी आप कर रहे हैं फिट्स अवलोकन संभाल के. आप विदेश में गए हैं तो एंजॉय, और विदेश से आए हो हमारे इस देश में तो भी एंजॉय. और अगर आप खा रहे हैं तो स्वादिष्ट भोजन हो. En ben je nog aan het koken? Nog even geduld, dat is zo klaar. En dan smakelijk eten voor straks, toch? Le chalte aapko agle geet ki aur mere pyare sunwalo. अगले गीत जो है मैं निकालूंगा फिल्म जिसका नाम है खून पसीना. खून पसीना 1977 का है फिल्म, 1977. अंजान साहब जी का लिखा हुआ गीत, नाइटिंगेल आशा जी की आवाज. काफी दिनों हो गया मैंने ये गीत को नहीं सुना, शायद आप भी. कल्याण जान जी ऑफकोर्स संगीतकार है मेरे प्यारे सुनवालो. राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के पेश करता हूं नाइटिंगेल आशा जी.
1: होय होय होय होय होय राजा दिल

राजा दिल मांगे चवन्नी उचाल के नाइटिंगेल आशा जी की आवाज मेरे प्यारे सिन्हा अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए कल्याण जैनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम खून पसीना मेरे प्यारे सिन्हा वालों 1977 का फिल्म है नीतिन सीवन और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है राकेश कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, निरूपा रॉय, कादर खान, द ग्रेट भारत भूषण जी और हेलन आसरानी साहब जी, अमजद खान, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। एपर्स हम आपको भुलाए नहीं, लेकिन अभी हम आते हैं आप लोगों की एप पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। मैं आपको ले चलेंगे छेड़छाड़ सॉन्ग की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। एक नगमा जो वार है पे कम्फर्ट स्टॉप, तार है पे कम्फर्ट स्टॉप, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक छेड़छाड़ नगमा जो मिलकर गीत गाएंगे। वंस अगेन नाइटिंगेल आशा जी अब की बार रफी के साथ मिलकर गाएंगे, मोहम्मद रफी साहब जी के साथ, कल्याण जी अनहन जी के साथ और संगीत पर। फिल्म का नाम छल्लू मेरा नाम या छालू मेरा नाम वो भी हो सकता है ना, ये भी 1977 का मूवी है मेरे प्यारे सिन्हा वालों। एंजॉय।

0: रुक मेरी रानी, नाइटिंग लाशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, ये छेड़छाड़ सॉन्ग वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं, कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर छालू या छालू, छल्लू मेरा नाम या तो छालू मेरा नाम, आई डोंट नो। मैंने तो फिल्म को देखा नहीं मेरे प्यारे से, नाम मुझे याद है, गाने मुझे मैं जानता हूं, लेकिन फिल्म मैंने कभी नहीं देखा। ये फिल्म 1977 का है, नीहतिन सीवनन सीवनन, कृष्ण नायडू जी ने डायरेक्ट किया है और महेंद्र संधू, विद्या सिन्हा, विनोद मेहरा, देवन वर्मा, मदन पुरी, इन सभी का फिल्म है। और मैं देखता हूँ हेलन भी ये फिल्म में है। बहुत सारे एपर्स हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और सभी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गाने ले जा रहे हैं उन सभी को पुराने यादों की ओर, तो ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर कुछ ऐसे ही है कि मिलकर हम आप हर एक बुधवार के रात्रि को पुराने यादें जो है मिलकर हम और आप ताजा करते हैं। और अति सो इन रात मैं भी ये महसूस करता हूं कि नगमाएं मुझे कहां कहां लेकर जा रहे हैं और गाने के साथ कुछ जो यादें जुड़े हुए हैं वो भी ताजा हो रहे हैं हमारे दिमाग में कि फिल्म मैंने कहाँ देखा और किसके साथ देखा, कहाँ था मैं उस वक्त। तो मैं भी आपकी तरह उसी तरह गीत सुन सुन कर यादें ताजा करते हैं। इफोनोडोलॉजी है दना डंकीवेल आपके लिए, डंकीवेल भी हम कहेंगे, हम हार्लेम का आइलिन जी, डंकीवेल आइलिन, अम्स्टलफेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी को भी हम कहेंगे धन्यवाद। और अम्स्टलफेन का कमला जी को भी हम कहेंगे डंकीवेल ऐप करने के लिए। एप्पल दोरन का सफूरा सुब्राती जी आपके ऐप के लिए चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डंकीवेल। और स्टीफन एंग भी मजा ले रहे हैं, गाने भी उन्हें पुराने यारों की ओर ले जा रहे हैं, भैया लक्ष्मण जी। और भैया लक्ष्मण जी आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है, आप एंजॉय करें। कतरीना अट हम सदम भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड या ये फिल्म चून हेल मोई, डंकीवेल कतरीना, इतनी बार बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि हमारी ये चून लोग पसंद करते हैं। फोकस में हैपिक दिस फना फट बखिन, जब से मैं ये प्रोग्राम सजा रहा हूँ तभी से है, और बदलूं क्यों, अगर चीज ठीक है सही है पहचान हो गई है तो मैं उसे क्यों बदलूं। थैंक यू वेल कतरीना। मफरो एंड मनेर बिहारी जी अट ब्रेडा थैंक यू वेल भी आपके ऐप के लिए, आप ही एंजॉय कर रहे हैं, चून किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भरे तादाद उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं। दनहाग से मिक लिफ मिक जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, खनीत फॉर द सॉन्ग्स हियर ऑफ यू आर। और दनहाग से दूर ऊपर ग्रोनिंग शहर में जो एक बहुत खूबसूरत शहर है ग्रोनिंग, एक कुमदार ख्राख इन गवाल, बेटी जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो बेटी जी को कहेंगे भी डंकीवेल चून करने के लिए, आप भी एंजॉय करें। हम वापस आपको ले आएंगे यहाँ रोटरडैम शहर में, जहाँ पर भैया राजेश सिंह भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए भैया राजेश सिंह जी। और रतनाम से सीधे ऊपर अगर आप जाएंगे डनकोम ये बेडन हेल्दर, और वहां से भी ऐप आए हैं इल्स रामदयाल जी का, इल्स भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इल्स जी आपके ऐप के लिए, आप एंजॉय करें और हम वापस आएंगे मार्सब्रुक जो यूट्रेख्ट के आसपास है, और वहां से आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ हरेंद्रू और चित्रा जी। थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनो, प्रोग्राम को हम आगे ले चलेंगे एक मस्ती भरी गीत सेवा में, मुकेश जी का गाया हुआ पेश करने जा रहा हूं। ये फनी सॉन्ग मस्ती भरी गीत गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ है, और अमिताभ बच्चन और मुकेश ये दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं। कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर फिल्म का नाम अदालत, और अदालत 1977 का फिल्म है। नीहतीन सीवनन सीवन।
1: अरे हमका का समझत हो, का कहा का समझत हो,
2: हम का

0: भी फूल।
1: हम का इका देत हो, हम का फूल का देत हो फूल।
2: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली, हो गई हमसे भूल भूल।

0: समझ गए हो ना क्या कहा हाँ
1: अरे हम कहा ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज और एक दिन हमने तो गया था जंगल मा और वहां मुझे मिल गया था ससुरा ये ताकू गुलशन मौरा जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुन लो मस्ती भरी गीत मुकेश जी ने गाए और साथ दिए थे अमिताभ बच्चन कल्याण जी आनंद जी संगीतकार मेरे प्यारे सुन लो 1977 निहतिन सेव नसीब का फिल्म अदालत से निकाले गया है ये नगमा जिसका प्रोड्यूसर नदिया वाला डायरेक्टर नरेंद्र बेदी अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान नीतू सिंह अनवर हुसैन कादर खान सुचित कुमार और क्या नाम है पिंचू कपूर इन सभी का फिल्म है मेरे प्यारे सुनो हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते तार के नंबर ईमेल और जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे चेक अंकेर www.pintujala.nl और ये भी आप सभी को हम बता दें मेरे प्यारे सुनने वालों हमारे इस हफ्ते का कैसे प्रोग्राम होंगे आज तो मैं हूं कल वैसा तो होना नहीं चाहिए था लेकिन कल मैं आऊंगा प्रोग्राम सजाने और एक खास कारण था कि मैं नहीं आ सकते लेकिन हम आएंगे कल एक तारीख है पहला दिन नए महीना अक्टूबर का तो कल हम आएंगे रात्रि में 8 से 11 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज ब्यूटीफुल रोमांटिक और ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे मोरखन आवंत पहला दिन नए महीने का 1 अक्टूबर दिल की आवाज रात्रि में 8 से 11 बजे शनिवार लेकिन आने वाले शनिवार हम नहीं रहेंगे सैटरडे 3 डन बेने करनीत में सैटरडे नाइट फीवर क्योंकि एक छोटा सा वेकेशन हम लेंगे और हम दूर जा रहे हैं और वही है कारण कि मैं प्रोग्राम शनिवार को नहीं बना पाएंगे मार फोकंड वीक 7 तारीख 8 तारीख और 10 तारीख दान बने कर भरपूर तू जाने तो उलझन अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनो लो उलझन 1975 का मूवी है निहतिन सेव नसीब एक नगमा हशमत साहब जी का लिखा हुआ और हशमत जी ने कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम किया है बहुत सारे खूबसूरत गाने हशमत जी ने लिखा फिल्म से कहना है नीत मयूली कहना नंबर्स वेल और हम इन्हें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इनके हाथों से इनकी कलम से इतने सारे खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है हाँ बना रहा हूं प्रोग्राम कल्याण जी आनंद जी का जिनकी म्यूजिक लाजवाब बेमिसाल है लेकिन लिखने वाले हशमत जी को हम नहीं भुला पाएंगे और खूबसूरत गीत इन्होंने लिखा है ये एक दर्द भरा नगमा है लेकिन बहुत सारी चीज इस गीत में इन्होंने कहा है और किशोर कुमार के मुखाने वो नगमा मैं पेश करने जा रहा हूं और जैसे मैंने कहा मूवी का टाइटल सॉन्ग है फिल्म का नाम है उलझन अजनी हतीन फाइव एंड सेवन

अपनी उलझन में, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, हशमत साहब जी का लिखा हुआ गीत किशोर कुमार ने गाकर सुनाया है। कल्याण जी आनंद जी की साज और संगीत पर फिल्म का नाम उलझन, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1957 तक का है, 1975 रघुनाथ जलानी जी ने डायरेक्ट किया है और संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित, द ग्रेट अशोक कुमार, फरीदा जलाल, उर्मिला भट्ट, विजू खोटे, रंजीत, इंदु शिवराज, आसरानी साहेब जी आगा, अरुणा रानी, पिंचू कपूर, मुराद साहेब जी, यूनुस परफेज, ओम शिवपुरी, ये सभी ने काम किया है। Ik hoop dat we nog in de jaren 60 komen, mijn repeerde zin. Lekin, waha aane ke liye rasta kaafi lamba hai. Aap ye socho ki 250 Hindi movies ke liye Kalyan ji Anand ji ne apna sangeet di hai. En ik ben ratan niet als ik niet uit alle films liedjes heb meegenomen. Pure 250. Klinkt een beetje als gabber. Kitne samba. Pure 250. Dil dena buri bala hai. Agle geet ka title hai. Aur ye nagma Gulshan Maura ji ne likha. मिलकर गीत गाएंगे उषा मंगेशकर और कंचन जी, कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम रफू चक्कर। रफू चक्कर और फिल्म 1975 का है, 1975 पेश करता हूं।

या दिल देना, बुरी भला है और भुली भला है, सपने कहाँ है, लेकिन क्या करे हम तो ये दिल दे बैठे, दे बैठे, दे बैठे। उषा मंगेशकर जी और कंचन जी की आवाजें, गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ ये नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी की साज और संगीत पर। रफू चक्कर फिल्म का नाम है, 1975 का मूवी, नरेंद्र बेदी जी ने डायरेक्ट किया है, ऋषि कपूर, पैंटल, नीतू सिंह, आसरानी, राजेंद्र नाथ और ना जाने कितने और लोग, जैसे कि मदन पुरी, भगवान दादा, अनवर हुसैन, सुलक्षणा जी, मुमताज बेगम, के एन सिंह, मैक मोहन, नरेंद्र नाथ, विजू खोटे, बड़े सापरू जी, फरियल मनमोहन, शेट्टी, जग्गू, ये भी काम किया है। उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूं आपका यार ओकया रतन राम दुलारे पांडे और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 8 बजे की ओर। एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए, क्यों, क्या ख्याल है? राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाएंगे लता जी और किशोर कुमार, कल्याण जी, अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म फरार का नगमा और ये गीत फिल्म में कई बार आए हैं, लेकिन प्यार भरा फिर चिन्ह आज आपको हम सुना रहे हैं। हीरो निवार

मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन होना ठूठो। लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, डगड़े त्रिजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं, कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम फरार, मेरे प्यारे सिनेवालो फरार 1975 का मूवी है, 1975 तक। शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट क्या हुआ फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर ने काम किया है। स्वागरी हंस लप्तन सिंह को अरसु तमीर दंकीवाल आपके ऐप के लिए, स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी अरसु तमीर। Enjoy you are, enjoy back to the future and for all the songs on Kalyan ji Anand ji। एक गीत किशोर कुमार का हम आपको सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, इंदौर का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा, जो फिरोज खान ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, काम किया है हेमा मालिनी के साथ। ये नगमा के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर।

0: वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
1: मेरी नजर से बचा न कोई और कैसे तू बच पाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ ये धमाकेदार नगमा जो हमने सेवा में पेश किया है। कल्याण जी अनान जी जिसका नटूरलक प्रोग्राम जो हम सजा रहे हैं, संगीतकार है। 1975 का फिल्म चोरी मेरा काम से नगमा निकाला गया है। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर ब्रीज और जिन पर ये नगमा पिक्चराइज किया गया है, फिल्म में प्राण साहब जी, शशि कपूर, सीना तमान और द ग्रेट अशोक कुमार, देवन वर्मा, इन सभी ने ये मूवी में भी काम किया है। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 8 बजकर। मैं जानता हूं एक फिनिट सेल वो ग्लोक, क्योंकि नगमाएं कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये वक्त बस निकला ही जा रहा है। वक्त तो मेरे लिए भी नहीं रुकेंगे, आपके लिए भी नहीं रुकेंगे, इस प्रोग्राम के लिए भी रुकेंगे नहीं। चाहे आंधी हो या तूफान, ये वक्त ही हमारे एन बहुत साफ कि भैया जो भी हो, यौता किस ओम फोरत खान नीत स्तोप खोन डोर डोर तखान। तो इनसे भैंस तो हम फिलहाल नहीं करेंगे, अंत है खा तो निर्लयस्त्र तू जाने तो। जेनी डंकीवेल, जेनी फोर ये अपीयर, डंकीवेल डंकीवेल जेनी। मैं हशमत साहब जी का एक नगमा तैयार करके रखा हूं, 1974 का मूवी फिल्म कोरा कागज का एक नगमा जो लता जी गाएंगे कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। कोरा कागज इतनी फिर से रूठे रूठे पिया मनाऊं तुम्हें कैसे।

अरे प्यार से रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, प्यार से मनाऊंगी तो कैसे मानेंगे नहीं। लता जी की आवाज मेरे प्यारे सुनो लो, हेशमत साहब जी का लिखा हुआ खूबसूरत गीत लता जी ने गाए हैं कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। 1976 का फिल्म कोरा कागज से हमने नगमा को निकाले। 1974 कोरा कागज अनिल गंगुली ने डायरेक्ट जो किया है, जया बच्चन और द ग्रेट विजय आनंद, गोल्डी आनंद, इन दोनों का एक फिल्म है जिसमें सीमा और रमेश देव भी है, अंशला सखदेव, ए के हंगल, देवन वर्मा, नाजनीन चुलक्षना, द ग्रेट भारत भूषण जी। प्रभा जी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं आमस्टरडम सेंटर में, हेल दख वेरक, लेकिन अब आराम से सुन रहे हैं प्रोग्राम और हमेशा प्रभा जी चून किए करते हैं अब द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। धन्यवाद प्रभा जी एट आमस्टरडम सेंटर, आप ऐप करते हैं तो दिल खुश हो जाते हैं क्योंकि आपका रेडियो सुबह और रात तक उजाला ही उजाला पर आप चून किए करते हैं। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सिनोला, मैं देखता हूं एक रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग है। हाँ जी, रोमांटिक भी है लेकिन छेड़छाड़ भी है। किशोर कुमार और लता का एक नगमा गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ नगमा है। किशोर जी और लता जी गीत मिलकर गाएंगे कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। ओकन फिल्म 1974 फिल्म का नाम हाथ की सफाई, कि हमको तो मोहब्बत हो गई है तुमसे और तुमको भी मोहब्बत हो गई अरे हमसे।

तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको तो मोहब्बत हो गई है तुमसे, अब तो मिल जाएगा वो खजाना जिसके पीछे है ये सारा जमाना। किशोर कुमार और लता जी मिलकर गीत रोमांटिक, जिसमें भी इतनी छेड़छाड़ है, मिलकर गीत गाए हैं। गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ और गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ ये गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, कल्याण जी आनंद जी की साझ और संगीत पर। फिल्म मेरे प्यारे सिनवालो 1974 का फिल्म हाथ की सफाई, प्रकाश मेहरा जी, डायरेक्टर रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, इन दोनों पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है। ये फिल्म में काम किया है और इन दोनों के अलावा विनोद खन्ना, सिमी गढ़वल, सापरू साहब जी, रंजीत, सत्यन कपूर ने काम किया है। उजाला रेडियो है और मैं देख रहा हूं ऐप आए हैं लेडन से और वो भी स्वागरी सरवन नाइगी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुरुख फन फकांसी स्वागरी और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। एंजॉय एंजॉय, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी की खूबसूरत गाने आज के सिलेक्शन में है, एक एक निकाल कर पेश कर रहा हूं। थैंक यू वेल फॉर योर अपीयर। 1973 के ओर ले चलता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों, 1973 एक फिल्म जिसके साथ अमिताभ बच्चन मशहूर हुए हैं, नाम बनाए हैं, उसके बाद में इनकी करियर जो है चला और ये फिल्म भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, ये गीत भी जीता है। मन्ना डे का एक नगमा निकाल रहा हूं, मन्ना डे दादा मन्ना डे जी का गाया हुआ, गुलशन मौरा जी का लिखा हुआ नगमा है, कल्याण जी आनंद जी की साज और संगीत पर। From the movie संजीव रजनी हतीन द्रियन सीवंत कहाँ है, हाँ यहाँ है, पेश करता हूँ।

वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, दोस्ती हो तो ऐसा, और इतने खूबसूरत प्यारे शब्द गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ। एंड ऑफ कोर्स फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ एक नगमा है फ्रॉम द मूवी संजीर, जो 1973 का एक फिल्म है, नीहतिंद्रियन सी, मतलब मन्ना डे जी और कल्याण जानान जी का म्यूजिक। प्रकाश मेहरा फिल्म संजीर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमिताभ बच्चन को रोल मिला है, और जया बच्चन जी के साथ अमिताभ बच्चन को रोल मिला है नादात दिलीप कुमार हिफ खवैखर, धर्मेंद्र हिफ खवैखर, राजकुमार हिफ खवैखर, देवानंद हिफ खवैखर, और अमिताभ बच्चन को रोल मिला है दांग से जवेद और सलीम जी, और कोई हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ तैयार नहीं था ये फिल्म में काम करने के लिए। बोली ये तो वैसे तो एक्ट करता है खूबसूरत, लेकिन इनकी जितनी मूवीज भी रिलीज हुए हैं संजीर से पहले सभी फ्लॉप साबित हुआ है। तो जया बच्चन जी एक दिन स्वेलाल तूनहाल फरलीफ वास अब दिलांगोर, तो इन्होंने कहा कि ना ये एकरे साथ हम काम करब, वंत ये एक दिन बनी बड़का, और जया हाथ खलाइक, और प्राण साहब जी कमाल का रोल इन्होंने अदा किया है भी फिल्म में, अजीत बिंदु सत्यन कपूर इफ्तखार, मोई फिल्म संजीर। और आज के लिए ये नगमा जो सबसे टॉप नगमा है फिल्म का जहां तक मेरा ख्याल है, निकाल कर आप तक हमने पेश किया है। एक और मैं देखता हूँ स्वागरी सुन रहे हैं प्रोग्राम, स्वागरी और सरहज, और वो भी अलमेर बैठ में, राज और आरती नंदन, थैंक यू लिवेल खनीतर फन फयुली आवंत एंड फन यू आर फन बैक टू द फ्यूचर। मेरे प्यारे सुनो, मैंने गीत जो तैयार करके रखा है मुकेश का एक नगमा है, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी, ये एक नगमा यकीनन आप पसंद करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द जो लिखा गया है जो गाया जाएगा बहुत मतलबी है। रजिंद्र कृष्ण जी ने लिखा, मुकेश जी गाकर सुनाएंगे, फिल्म का टाइटल सॉन्ग, और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर, 1973 का फिल्म कहानी किस्मत की का नगमा पेश करने जा रहा हूं, हीरान यू आर।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालो, इंसान हंसे या रोए, मैं तो गीत में हमेशा की तरह गुम हो जाते हैं। क्या होना है, कब होना है, लिखने वाला बस जाने। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनो वालो, द ग्रेट राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ नगमा मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर। फिल्म का नाम के यानी कि कहानी किस्मत की, और कहानी किस्मत की अर्जुन हिंगो रानी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी है। इसमें निगरेत भारत भूषण, धर्मेंद्र जी, रेखा अजीत और राजेंद्र नाथ, मैं देखता हूँ यूनुस परवेज, सुलक्षणा हीरालाल, यंकी दास ने काम किया है। मेरे प्यारे सुनो, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी एंजॉय कर रहे होंगे। 9 मिनट गुजर चुके हैं 8:30 फोर ओ क्लॉक फन ऑफ या ओवर क्लॉक फन हाफ नेह हो चला है। 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे, मतलब ये कि अनधिक 20 मिनट। राजेंद्र कृष्ण जी का एक और नगमा अब की बार किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। फ्रॉम द मूवी 5 राइफल्स से हम नगमा निकालेंगे, और 5 राइफल्स 1974 का फिल्म है, 1974 1974। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह और तेरा रूप राम राम, तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह और तेरा रूप राम राम।

तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह और तेरा रूप राम राम। या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरा प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज और राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार ने गाए हैं। कल्याण जी अनान जी जिसका आज पहला प्रोग्राम सजा रहे हैं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में। En we gaan een aantal weken, 6, 7, misschien wel 8 programma's van Kalyanji en Anji maken. Met de best of the best of Kalyanji en Anji hier on You Are. Or Wobi, Back to the Future mee. Je hebt film 5 Rifles, mijn pjare zinwalo. Or film 1974 ka hai, 1974. Ayes Johar film ka producer, director or actor. जिसमें राजेश खन्ना भी है, अंबिका जोहर, शशि कपूर, कमल कपूर, सापरू साहब जी, मुराद साहब जी और शम्मी कपूर।

अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक नगमा जो लता जी गाकर सुनाएंगे। और ये गीत पहले बहुत फरमाइश किया जाता था, पता नहीं आजकल होता है या नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है नहीं हो रहा है। और कल्याण जी आनंद जी का जो सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे फरमाइश सॉन्ग्स हैं, और तू तो जाने हैं, आप सभी जो मुझे जानते हैं, आप सभी को तो मालूम है कि मुझे फरमाइश सॉन्ग्स, शादी विवाह, लोरी वाला सॉन्ग, इस तरह के नगमाएं मुझे काफी पसंद है। तो चलो ये नगमा जो अनजान साहब जी ने लिखा, लता जी गाकर सुनाएंगे, कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर निकालेंगे 1970 का मूवी फिल्म जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म जॉनी मेरा नाम से गीत निकालेंगे और आप तक मैं पेश करता हूं ये नगमा।

बाबुल प्यारे ओ रोये पायल की छम छम। लता जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा लता जी ने गाकर सुना है कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। 1970 का मूवी जॉनी मेरा नाम से हमने नगमा को निकाले। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गोल्डी आनंद, विजय आनंद है, देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण साहब जी, प्रेमनाथ, आयुष जोहर का एक फिल्म जिसमें जीवन भी है। मेरे प्यारे सुनो, वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं, और क्योंकि इस तरह के फरमाइश सॉन्ग हो रहे हैं, हमने पेश किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी में एक और हो जाए। ये भी तो एक और फन, हमें मौका ना दिए। एक गीत है इंदवर का लिखा हुआ, महेंद्र कपूर जी की आवाज, फ्रॉम द मूवी पूरब और पश्चिम, और ये फिल्म 1971 का है। नहीं तक कल्याण जी अनान जी संगीतकार, मनोज कुमार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर ये फिल्म का, विद सैरा बानो, प्राण, ओम प्रकाश और मदन पुरी। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया मेरे प्यारे सुनने वालों, तमाम एपर्स को भी। हम आप सभी से कल मिलेंगे, मोरखन हाफन दन बने कर फन 8 इन द आवन टोट 11। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: फागुन फगुआ होई चैत ते सुबन भूली रहे सावन में डर कृष्ण ही डोलना कुबरी संग।

इन संजय सावंत से आप गीत को सुने की थोड़ा प्यार चाहिए। उजाला रेडियो है ये, हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो तू जाने है तो

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है। तकीला नकीला हबाहूबा लबालूबा दुम तक दुम तक।

0: कभी पीड़ी का बाउड़ी गाना पप पप तरप तरप तरम पम पम
1: जैकंजिल went up the hill Jack and Jill went up the hill inside